0: आपका ठीक से अगर दिए गए तो करेक्ट है वो।
1: Good morning.
0: Go ahead. Sorry, Alpha Bravo Golf 4-1 on a blue Toyota. Actually, I want that, my buddy.
1: 10-4.
0: Blue Jeep.